लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हो।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ

सुनो मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तजन लाखों की संख्या में लंबी लंबी कतारें बनाकर हरिद्वार से कांवर में गंगा जल भरकर बड़े ही श्रद्धा भाव से शिव कांवर कांधे पर रखकर पैदल चलकर बम बम का जयकारा लगाते हुए शिव भोलेनाथ के द्वारे पर आते हैं। तो आइए मिलकर गुणगान करते हैं महादेव का।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, मैं हूं सुभाष और जहां तक ये आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं। जहां जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे वहां पर वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है हमारे प्यारे सुनने वालों।

वेल यार, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, देखने वाले ने तुझको देखा होगा। उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने।

हमको हमको दीवाना कर गए। हंसते हंसते हंसते हमको दीवाना कर गए यार। उस तरह से उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है यार, हंसते हंसते और हमको दीवाना कर गए।

वेल यार कितनी बेचैन होकर तुमसे मैं मिली। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे यार, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9 3 4 0 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके हैं। हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक, सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक। यू आर उजाला रेडियो है।

वेल वेल यार, कितना मोई, कितना सुंदर गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुने और गाना जो आप लोग सुने, बस यार सब है फिदा। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, फिर मोहब्बत हो जाता है यार, हो जाती है हम।

वेलियर। बोले दिल दिल दिल बोले संभल जा तू, बोले फिर मोहब्बत करने चला है तू। अविसरा से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे।

वेल यार ये बातें कभी तू ना बोले सोचना, और बोले कभी ये बातें तू सोचना, बोले कि कभी तेरे लिए जागे हैं कभी तेरे लिए रोई है यार, और ये प्यार प्यार प्यार में हो जाता है, तेरे लिए जागे हैं तेरे लिए रोई है, ये बातें तू कभी ना भूलना।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। मैं हूं सुभाष और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड आदाब। कुछ मिले जुले संगीत से हम आप सभी को खिदमत करने वाला हूं और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं।

बस यार इतना है तुमसे कहना, मैं रहूं या ना रहूं, बस यार तुम साथ ही रहना, बस इतना है तुमसे कहना। आयुषरों से इतना मोई गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, रोमांटिक सॉन्ग जो हम आप लोग को सुना रहे हैं। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों, और हमारा फोन का नंबर है, दफ्तर का फोन का नंबर है, हम आप लोग से बता दें हर एक काम काज के लिए यार आप लोग तार कर सके हैं 020-409-0807 पर।

आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, मैं हूँ हीरो तेरा, आओ इस तरह से गाना जो आप लोग सुन रहे थे, और आशा है कि आप लोग को भी इतनी से मोई लगल हुई। कि आप लोग भी सुन करके बोले हो यार मैं हूँ भी तेरा हीरो, मैं हूँ तेरा हीरो भी है।

कमाल यार तुम है मेरा प्यार जब से तू मेरी बाहों में है। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। और चलिए अब की बार एक और ऐसा ही रोमांटिक गीत हम आप सभी को सुनाने वाले हैं और हमसे चलो की तलों के भी मोई लगी आप लोग को भी पसंद आते होंगे।

0: है।
1: वेल यार, क्या चीज है तुमको खुद मालूम नहीं है। और तू जान है मेरी, तुमको मालूम अभी नहीं है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, यू आर उजाला रेडियो पर।

मेरी तरह वेल मेरी तरह भी प्यार कर कर देखो ना, बोले कितना मजा है एंड कैसा नशा है, मेरी तरह प्यार करके देखो ना।

रल तेरी तेरी चुनरिया दिल ले गई और धीरे धीरे बोले तेरी धड़कन। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। अब की बार चलिए गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, बस चलिए गाना जो आप लोग सुनेंगे यार, एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। और जो गाना हमारे तो लोग के सुनावे गनवा तनिस तनिस से ऐसे होना चाहिए। और गाना जो आप लोग सुनेंगे यार, तो इस तरह से पेश आप सभी सुनने वालों के लिए जो आप लोग हमारे साथ ही दे रहे हैं।

वेल यार, जादू है कि नशा है और गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे और हम सुचुल की गाना तो लोग कभी मोई लगल हुई एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे

और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने यार, और आशा है भी कि तो लोग के गाना भी मोई लगल हुई। और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं।

0: चलिए अब की बार एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुना देते हैं।
1: चैन भी मेरा दर्द भी।
0: और गाना जो हम आप लोग को सुनाने वाले हैं यार, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और चलिए गाना जो आप लोग को हम सुनाने वाले हैं, और इस तरह से होना चाहिए।

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein. हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए. उजाला इस वन हेल नीदरलैंड. तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. बेन आई बिनकोट यारख तोर जन्मदिन है, तोर सालगिरह है, अब खाए त्राव तोर विवाह होने वाले है, तोर शादी होने वाले है, या किसी का मुंडन संस्कार है. उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं. 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो. स्टूडियो मेल नर info@ujala.nl.

क्या खूब आंखें है तेरी, क्या खूब आंखें है तेरी, जी लेंगे देख देख कर इनको। फिल्म काम चोर का गीत आप सुने किशोर कुमार और अलका याग्निक से उजाला रेडियो पर।

क्या मिले जाने जा, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। लता जी एंड उदित नारायण, फिल्म सातवां आसमान से आप सुने। अब एक बार फिर लता जी, इस बार मनमोहन सिंह के साथ, फिल्म वारिस का गीत।

मजा क्या आएगा दिल लेने देने के लिए, जो देना है तो अभी दे दो, जो लेना है तो अभी ले लो। तो क्या

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

तू सो जाए मैं जागूं, राम करे कहीं ऐसा हो जाए कि मैं जागूं और तुम सो जाए, राम करे कहीं ऐसा हो जाए। मुकेश जी की आवाज और फिल्म मिलन का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने।

धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया। हाँ, धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, क्या बात है। धूल का फूल फिल्म से गीत को आप सुने, फिल्म धूल का फूल। हाँ, और गीत के गाने वाले महेंद्र कपूर एंड आशा जी। और अब लता जी के साथ सुनिए मुकेश जी की आवाज में एक गीत।

और देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा, सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे बिना। लता जी के साथ आप सुने उदित नारायण को, फिल्म फर्ज का गीत, और ये उजाला रेडियो है।

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
3: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammad Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है. बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

और क्यों होता है प्यार, क्यों होता है प्यार, क्यों आता है बहार, ना तुम जानो ना हम। लकी अली और रामिया से आप सुने फिल्म का नाम कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, उजाला रेडियो से। अगला गीत उदित नारायण की आवाज में होंगे।

खुशी तू मेरी दिन में मेरी रातों में, तेरी याद हम सफर सुबह और शाम। उदित नारायण की आवाज, फिल्म का नाम और प्यार हो गया।

उजाला रेडियो पर आप गीत को सुने, फिल्म का नाम दिल क्या करे। अगला गीत जो प्रोग्राम में होंगे सुनने वालों, पेश है आदिनाथ मंगेशकर एंड ज्योत्सना हर्दिकर, इन लोगों की आवाजों में। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला.nl आप जरूर देखें।

दिल खिले और जीने को मुझे क्या चाहिए। फिल्म क्रिमिनल का गीत फिर से सजाइए और गाइए। उजाला रेडियो पर आप सुने।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

हे सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: छोरी छोरी छोरिया,
1: जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा।

0: तो तू
1: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा
0: होश करो तू
1: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा आशिकों की सुन
0: छोड़ मेरी धुन वैसे ही कर ले गुजारा
1: आ आ आ चोरी आ आ आ चोरी आ आ आ चोरिया
0: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

0: मैंने कहा जा
1: मिलकर बना आ जा,
0: मैंने कहा जा
1: मिलकर बना आ जा,
0: मैंने कहा ना,
1: मैंने सुना आ आ आ चोरी आ आ चोरी आ आ चोरिया
0: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा
1: आ आ चोरी आ आ चोरी आ आ चोरिया
0: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

0: beste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Doctor ji, please ek baat sunti jaiye, bas ek baat, doctor saab.
2: Kahiye.
1: वो जो आपने मेरे लिए दुआ की थी ना, जरूर सच्चे दिल से की होगी। भगवान ने सुन ली है और मुझे हो गया है।
2: क्या हो गया है?
1: मुझे प्यार हो गया है।
2: अच्छा, मुबारक हो।
1: लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं, किससे?
2: अरे हाँ, ये तो मैं पूछने भूल गई, किससे?
1: जी वो,
2: बोली बोली, कौन है वो खुशनसीब?
1: जी वो खुशनसीब आप ही हैं।
2: थैंक यू वेरी मच। माफ करना, मुझे कोई भूख नहीं।
1: सुनिए, ये भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है।
3: ओए चांद।

जाते जाते ओ जरा जाते जाते जरा मुड़के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते।